0: ये है लाइका रेडियो सी टीवी एंड सी फाइव प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंट इम अपोलो हैमर स्मिथ हमारे राम बुक योर टिकट्स नाउ विजिट www.eventimapolo.co.uk एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो
1: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
2: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
1: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
2: And you didn't pay those massive roaming charges?
1: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
3: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com
0: Sounding good throughout the night with the biggest soothers it's your Laika Radio

0: ये है
1: Laika Radio, आतिफ असलम लाइव इन द यूके.
2: तेरे लिए जो दीवाना बनके तेरे.
0: The O2 London on Sunday the 14th of June.
1: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner Laika Radio.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
4: गारंटेड.
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे.
5: साउथ हॉल ट्रेवल.
4: फोन 02085748410.
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: Fishbert Naga with The Reload every weekday afternoon at 1 p.m.

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए।

है साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई

जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, ज्यां मळशे शांति भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 0203-773-6333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
5: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
6: A Leica Radio Classic.

0: Weekend Breakfast is sponsored by Here Are Foods, specializing in all your kitchen needs, including spices, lentils, rice, and flour. Here Are Foods, king in quality, king in taste.
1: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
2: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
1: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
4: ZTV HD पर देखिए गंगा माई की बेटियाँ
5: शांतनु जी, हम तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए.
4: जो कभी दिल से जुड़े थे आज मजबूरियों ने उन्हें दूर कर दिया है.
5: समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो सिद्धू.
4: क्या सिद्धू और स्नेहा फिर मिल पाएंगे?
6: स्नेहा जी और हमें कोई रंग नहीं कर सकता.
4: देखिए गंगा माई की बेटियाँ रोज शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप.
7: लंदन दिस 20th जून बॉलीवुड की पावर हाउस वॉइस भूमि त्रिवेदी आ रही है लाइव.

0: presented by One World Events and SR Events at Crystal Grand Slough, 6 p.m. to 11 p.m. Book now at srevents.com. Bhumi Trivedi Live in London. Exclusive radio partner, Leica Radio.
1: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
2: Position your business for success with Sibici Business Center. We offer flexible warehousing and light industrial units ideal for storage, workshops and growing businesses, plus serviced offices, hot desks and meeting rooms tailored to the way you work. Enjoy flexible terms, convenient parking and half-price rent for your first month.
3: For virtual offices, business address registration and more, call 0208 799 7474. Sibici Business Center. Professional, flexible, built for business.
4: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस
5: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरीज सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14 से 21 जून वुडलेन स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर फ्री एंट्री सपरिवार अवश्य पधारिए रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुडलेन स्टैनमोर HA74LF फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com कॉल 07932623852
6: KMB with Shanila presents London's biggest Asian wedding fest and bridal fashion show. Top designers from Afghanistan, Bangladesh, India, Pakistan and Middle Eastern communities showcasing stunning bridal collections live on the runway. Planning a wedding? Find everything under one roof. Plus, enjoy Qawwali Night by Ahmed Shah and group. Happening on Friday the 12th of June at the Willows from 1 p.m. till late. Tickets on Eventbrite. Call 07989 972879.
7: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
8: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप
9: टेबल पे सिर्फ एक हीरो जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स
8: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स
9: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स देसी स्वैग इन एवरी बैग
1: आप कैसे ठीक है ऑलराइट नीरज हियर आई प्रेजेंट द लाइका रेडियो नेटवर्क चार्ट शो एवरी सैटरडे गोइंग ऑन लाइका रेडियो ग्रेटर लंदन लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड

0: देने दीवार है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून
2: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे
3: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर
2: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
3: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
2: दर्शन पण अने यूरोप पण
3: सीट्स जल्दी भराई रही छे आज ज बुक करो स्टार टूर साथे
2: कॉल 0208

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: Be part of a historic grand opening.
3: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
2: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
3: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
2: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
5: आतिफ असलम वीकेंड. Catch him live at the O2 on 14th June. Tickets at AXS. Exclusive partnership Leica Radio.

0: तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: फ्रॉम सीनिक ब्रेक्स इन स्कॉटलैंड, द लेक डिस्ट्रिक्ट, डेवन एंड कॉर्नवॉल टू क्लासिक यूरोपियन जर्नीज अक्रॉस फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली एंड द नेदरलैंड्स, स्टार टूर्स टेक्स केयर ऑफ एवरी डिटेल, इंक्लूडिंग इंडियन मील्स ऑन टूर. वेल प्लान्ड, कंफर्टेबल, ट्रस्टेड, दैट्स द स्टार टूर्स एक्सपीरियंस. कॉल 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
3: Want magic in every bite? Grab Hera Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hera Foods, king in quality, king in taste.
4: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: में 07300998823। 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंदन मा आवी रही छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बंड जी
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
2: Throwback plays now.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply।
3: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 0203-773-6333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
4: आतिफ असलम वीकेंड,
5: आतिफ असलम वीकेंड।
4: Catch him live at the O2 on 14th June. Tickets at AXS. Exclusive partnership Leica Radio.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
3: Want magic in every bite? Grab Hera Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hera Foods, king in quality, king in taste.
4: Seven stations, one podcast, one mobile app. This is the Leica Radio Network. Sunday.

0: Starting off the show this evening with two beautiful numbers from Airlift and Om Shanti Om in the vocals of the one and only KK, remembering this legend on his fourth death anniversary.
1: Like a radio.
0: It's a beautiful Sunday evening. Aaj hai 31 May 2026. You're tuned into the Sunday Wrap with me, Mesa, on Like a Radio. I'm live on 1458 AM in Greater London, DAB Digital Radio, across the Midlands, Alexa, Google Home, LikeAradio.com or Like a Radio mobile app for. आप मुझे सुनते हैं इस शो के स्पॉन्सर्स हैं tickets2india.co.uk योर गो टू प्लेस फॉर अ वेरी अफोर्डेबल ट्रैवल डील्स टू इंडिया एंड अदर वर्ल्ड वाइड डेस्टिनेशंस एज वेल. इनकी वेबसाइट जरूर चेक कीजिएगा बिफोर यू बुक योर नेक्स्ट हॉलीडे. क्या पता आपको एक अमेजिंग सी डील मिल जाए. एंड यू नो हॉलीडेज में ट्रैवल करने से पहले अगर कोई डील मिले तो हॉलीडेज का मजा पहले से ही शुरू हो जाता है ना. Hope everyone is doing well and have been enjoying your weekend, especially since this has been an Atif Aslam special weekend on Like a Radio. And yes, the charming, the superstar Atif Aslam is coming to town. And you will see him live at the O2 in London on 14th of June 2026. And show ki exclusive radio partners hai aapke apne Like a Radio. How exciting is that, hai na? So, the magic continues on my show as well. Lots of Atif Aslam songs are lined up on the show tonight. And saath saath hamara romantic hour hoga 8 se 9 baje ke बीच हमारे यू नो लास्ट आवर में आप सुनेंगे द पाकिस्तानी हिट, एक बहुत ही खूबसूरत गजल और साथ साथ कैसे भूल सकती हूँ हमारे दो फन गेम्स जॉइन द डॉट्स और कैच मी इफ यू कैन. ऑल ऑफ दैट हैपनिंग, कहीं मत जाइएगा. स्टे ट्यून्ड ओनली टू लाइक अ रेडियो.
1: WhatsApp Like a Radio Greater London now on 07424 22 22 22. Another huge giveaway is coming. Like a Radio Network.

0: Join the dots with Messa.
1: Leica Radio.
2: It's time now for Join the Dots with me, Messa, on my show, The Sunday Wrap. मैं आपसे मिलने आती हूँ एवरी संडे इवनिंग एंड आप जब मुझसे मिलते हैं और हम साथ मिलके ये फन गेम्स खेलते हैं तो बड़ा मजा आता है ना. व्हाट इज दिस गेम? वेल मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट इट ऑलरेडी. वेल लेट मी टेल यू, इस गेम में मैं आपको तीन क्लूज देती हूँ एक बॉलीवुड फिल्म की एंड यू हैव टू जॉइन द क्लूज एंड टेल मी विच मूवी आई एम टॉकिंग अबाउट. लेकिन कम से कम क्लूज में जवाब देना ये आपका काम है. दैट इज द चैलेंज. Guys, so let's see how many of you can guess today's movie in the first clue itself. Why not? So, pehla clue mera aaj ka hai. Aaj ki film 2011 mein, yani 2011 mein release hui thi, aur ye ek romantic action comedy film hai. In fact, ye movie ek Malayalam film ki remake hai. Film did really very well at the box office and iska music jo hai bada hi zabardast bhi tha. Film ke main leads ki baat karu to film ke hero hai Bollywood ke Bhai Jaan aur unki heroine bani hai the very beautiful Bebo. Tell me which movie this is. 2011 mein release hui romantic action comedy film hai jo ek Malayalam movie ki remake hai aur film mein great music hai. It was a great hit at the box office. और फिल्म के हीरो बॉलीवुड के भाईजान हैं और हीरोइन है द वेरी ब्यूटीफुल बेबो. सेंड इन योर आंसर्स, सेंड इन योर गेसेस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर.
0: WhatsApp Leica Radio Greater London now on 07424 22 22 22. Artist of the Week is brought to you by our new podcast Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: 776 runs in the entire tournament. Amazing tournament there. I hope you guys enjoyed it. I did. And let's now wait for the next season of Indian Premier League.
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorised and regulated by the FCA. Your Sunday evenings with Mesa, proudly sponsored by ticketstoindia.co.uk. For the best rates, book online or call 020 8518 9100. Bringing India closer.
2: The timeless soul of Qawwali returns to the stage.
3: Presenting Bismil Ki Mehfil UK Tour 2026 live in London.
2: Featuring Bismil, India's biggest Sufi sensation.
3: Known for his soul-stirring voice, electrifying live performances and the modern revival of the Mehfil experience.
2: Join us for a mesmerizing night of soulful music and the magic of a true Mehfil.
3: On Sunday the 7th of June at Hackney Empire.
2: Book your tickets now at zeppelinentertainment.com. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colourful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the Oxford Playhouse, 2nd to the 6th of June. For tickets and more info, click oxfordplayhouse.com. Radio partner, Leica Radio.
5: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Position your business for success with Sabici Business Center. We offer flexible warehousing and light industrial units ideal for storage, workshops and growing businesses, plus serviced offices, hot desks and meeting rooms tailored to the way you work. Enjoy flexible terms, convenient parking and half price rent for your first month.
7: For virtual offices, business address registration and more, call 0208-799-7474. Sabici Business Center. Professional, flexible, built for business.
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
9: गारंटेड?
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल।
9: फोन 0208574 8410।
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
10: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस
11: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरीज सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
12: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट खाना फाइव कोर्स लंच सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
13: लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14 से 21 जून वुडलैंड स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर फ्री एंट्री सपरिवार अवश्य पधारिए रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुडलैंड स्टैनमोर HA74LF फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com कॉल 07932 6 2 3 8 5 2
14: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
15: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
14: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
15: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
17: आते फसलों वीकेंड। Catch him live at the O2 on 14th June. Tickets at AXS. Exclusive partnership Leica Radio.

0: is Leica Radio.
1: This is the romantic hour of my show. The show is the Sunday Wrap with me, Mesa, on Leica Radio, 1458 AM in Greater London, DAB Digital Radio. Across the Midlands, Google Home, Alexa, LeicaRadio.com और Leica Radio mobile app पर आप मुझे सुनते हैं. वैसे आपके पास अगर हमारा Leica Radio का mobile app है, then you can also listen to Leica Gold Radio, which is London's number one Asian retro music station. And iske alawa, of course, Leica Radio Greater Manchester and Leica Radio Midlands, the Leica Radio 90s, जो ऑफ कोर्स आपने सुना ही होगा, UK's first 90s Bollywood music station, Leica Radio Punjabi, which is our first ever Punjabi music station, and Leica Gold 2 as well, which is a Bollywood classics non-stop channel. All that, yes, the Leica Radio network is expanding. आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से, थैंक यू सो मच. आप हैं तो हम हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव. एंड कमिंग बैक टू दिस आवर नाउ, दिस इज द रोमांटिक आवर ऑफ द शो. बहुत सारे ब्यूटीफुल प्यार भरे नगमे, और साथ साथ आपको याद दिला दूं, दिस इज ऑल्सो द आतिफ असलम स्पेशल वीकेंड. सो एवरी आवर ऑन सैटरडे एज वेल एज संडे, यू हैव बीन लिसनिंग टू आतिफ असलम सॉन्ग्स. एंड आतिफ असलम इज गोइंग टू बी इन टाउन ऑन द 14th of June 2026 at the O2 in London, performing live just for you guys. So do check out if tickets are available. Abhi tak bhi, then go grab it. EXS.com pe. Leica Radio is the official radio partner of this event.
0: Join the dots with Mesa.
2: Leica Radio.
1: और साथ साथ चल रहा है जॉइन द डॉट्स. जैसे कि आप जानते हैं, इट इज माय फन गेम जो मैं आपके साथ खेलती हूँ इन द फर्स्ट एंड सेकंड आवर ऑफ द शो. एंड इन द थर्ड आवर आई हैव गॉट अनदर फन गेम कॉल्ड कैच मी इफ यू कैन. और कंग्रेचुलेशंस गोइंग आउट टू साधना एंड नीलू एज वेल फॉर गिविंग द करेक्ट आंसर टू टुडेज जॉइन द डॉट्स गेम. यू गाइस हैव गेस्ड द मूवी इन जस्ट वन क्लू, विच इज अमेजिंग. तो मैंने आपको पहले क्लू में ये बताया कि आज की मूवी 2011 में रिलीज हुई एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जो एक मलयालम फिल्म की रीमेक थी. फिल्म डिड रियली वेरी वेल एट द बॉक्स ऑफिस. आई रियली एंजॉयड दैट मूवी. एंड मूवी में बहुत अच्छा म्यूजिक भी था. और फिल्म के लीड एक्टर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया, दैट द फिल्म फिल्म के जो हीरो हैं वो हैं बॉलीवुड के भाईजान, और उनके साथ हीरोइन बनी है द वेरी ब्यूटिफुल बेबो. अब आपको सेकेंड क्लू देती हूँ, शायद चीज़ें थोड़ी आसान हो इफ़ यू हैव नॉट बीन एबल टू गेट गेस द मूवी येट. तो फिल्म में एक पॉलिटिशियन है हु अपॉइंट्स लवली बलवंत सिंह टू प्रोटेक्ट हिज डॉटर दिव्या फ्रॉम सम ऑफ हिज पॉलिटिकल एडवर्सरीज हु आर टारगेटिंग हिम. दिव्या जो है, शी सून फॉल्स इन लव विथ लवली, बट शी इज़ अफ्रेड टू रिवील हर आइडेंटिटी. सो वो छाया बन के लवली से फ़ोन पे बात करती है, एंड लवली फॉल्स फॉर छाया नॉट नोइंग हु शी रियली इज. अ लव स्टोरी, अ ब्यूटिफुल वन, रिलीज्ड इन 2011. इफ यू नो विच मूवी दिस इज, अपने जवाब इस नंबर पे भेज दे.
0: WhatsApp Leica Radio Greater London now on 07424 22 22 22. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: So using SBI, your £1 is equivalent to 127.3 Indian rupees, and you can send money to India via SBI Yono app or branch before the end of June. And guess what? You'll be in to win a £75 voucher daily when you spend over £1,000, and a 1 gram gold coin every week when you send over £2,000. Terms and conditions apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: This summer at Tesco Mobile, get our 100 gig SIM for just £15 a month for 24 months with club card prices. saving you £60. Plus, you'll get £20 worth of club card points, worth double with reward partners, or even triple with selected eating out venues. More points, more summer. It pays to be connected. Search Tesco Mobile. Every little helps. Ends 12th of July. Club card 4G phone and 24-month credit agreement required. Savings calculated on contract duration terms at tescomobile.com/terms. Like a radio.
0: Your Sunday evenings with Mesa. Proudly sponsored by tickets2india.co.uk. For the best rates, book online or call 020 8518 9100. Bringing India closer.
2: Notice the change in your hearing? We'll get a hearing check from Specsavers. Oh, not sure where to start? Well, we're very flexible. Book one online, on the phone, on your lunch break, on Saturdays, on the same day if you're lucky. Oh, you only miss the odd word. But what if the odd words you're missing are nice ones like love you, or important ones like duck? Oh, too expensive, is it? All right, we like you. We'll do it for nothing. For free hearing checks, should have gone to Specsavers.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash in carry and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
6: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स Your travel mantra.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
12: No more worries for me.
13: Southall Travel, at all protected.
14: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ
15: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स जो है बारबेक्यू लेमन चिली मस्त मसाला और मैक्सिकन सालसा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल
14: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
16: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होल सम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
17: दिस सुपरहिट सॉन्ग इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय टिल्डा बासमती राइस डिस्कवर द सीरियस डिलीशियस पॉसिबिलिटीज विद टिल्डा

0: A beautiful track there from the movie Jab Jab Phool Khile, Mohammad Rafi Sahab और Suman Kalyanpur ji की आवाज़ में. आज definitely is a sad day for all music lovers क्योंकि legendary Indian singer Suman Kalyanpur passed away just today at her residence in Mumbai. She was 89 years old. Suman Kalyanpur was born on January 28, 1937 in Bhavanipur in Bangladesh, then undivided India. और सुमन जी ने म्यूजिक और सिंगिंग यू नो चाइल्डहुड से सीखना शुरू किया. इन 1958 शी गट मैरिड टू मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन रामानंद कल्याणपुर एंड स्टार्टेड हर करियर सिंगिंग फॉर ऑल इंडिया रेडियो इन 1952. और देन यू नो उन्हें अपना पहला चांस मिला टू सिंग फॉर द मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी इन 1953. और फिर उन्होंने बॉलीवुड में भी कई गाने गाए, हिंदी में, मराठी मूवीज़ में वो काफ़ी पॉपुलर रहीं. और उन्होंने यू नो बॉलीवुड में शंकर जयकिशन, रोशन, मदन मोहन, एस डी बर्मन, इन सभी के लिए गाने गाए. अपने करियर में कई बार उन्हें यू नो कंपेयर किया गया टू लता मंगेशकर क्योंकि उनकी जो वॉइसेस थी दिक्का यू नो दे वर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर. बट सुमन जी इन एन ओल्ड इंटरव्यू हैड सेड दैट शी वाज वेरी अनकंफर्टेबल रिगार्डिंग द सिमिलैरिटी बिटवीन हर वॉइस एंड लता मंगेशकर्स वॉइस. बट शी ऑलवेज थॉट दैट यू नो लता जी और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और ऐसी राइवलरी की कोई बात नहीं थी. सुमन जी, वी विल मिस यू and I'm sure the whole you know music industry is gonna miss her forever.
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और अगर आप हॉलीडेज प्लान कर रहे हैं देन यू नो व्हाट यू कैन मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथॉल ट्रैवल्स. यू कैन एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मच मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड It all protection trusted for over 40 years and winners of the British Travel Award. It is a Southall Travel that I'm talking about. Visit Southall Travels or call them on 0208-574-8410.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Atif Aslam Weekend.
3: Atif Aslam Weekend.
2: Catch him live at the O2 on 14th June. Tickets at AXS. Exclusive partnership Leica Radio.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून
2: फ्रॉम सीनिक ब्रेक्स इन स्कॉटलैंड द लेक डिस्ट्रिक्ट डेवन एंड कॉर्नवॉल टू क्लासिक यूरोपियन जर्नीज अक्रॉस फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली एंड द नेदरलैंड्स स्टार टूर्स टेक्स केयर ऑफ एवरी डिटेल इंक्लूडिंग इंडियन मील्स ऑन टूर वेल प्लान्ड कंफर्टेबल ट्रस्टेड दैट्स द स्टार टूर्स एक्सपीरियंस कॉल 0208 900 2323 or visit startours.co.uk
3: WhatsApp Leica Radio Greater London now on 07424 22 22 22. Leica Radio. Messer on the Sunday Wrap. This is Leica Radio.

ट्रैक से टू किक स्टार्ट द लास्ट आवर ऑफ द शो ब्रह्मास्त्र से केसरिया इन द वोकल्स ऑफ अरिजीत सिंह एंड दिस वन इज सोनू निगम एंड अलका याग्निक ऑन द वोकल्स ऑफ बनके तेरा जोगी फिर भी दिल हिंदुस्तानी मूवी से वेलकम टू द लास्ट आवर ऑफ द संडे रैप

0: Leica Radio.
1: Yes, this is Leica Radio, and I'm live on 1458 AM DAB Digital Radio across the Midlands. Alexa, Google Home, LeicaRadio.com or Leica Radio mobile app पर आप मुझे सुनते हैं. मैं कौन हूँ? Well, मैं हूँ Mesa, और आप मुझे every Sunday सुनते हैं. मैं आपका साथ देती हूँ on my show, The Sunday Wrap, from 7 PM to 10 PM, and the show is sponsored by a very, very affordable travel website which is called tickets2india.co.uk. If you haven't checked it out, then do so, क्योंकि अक्सर उनके पास you know कई सारे deals होते हैं which makes your travel quite affordable and lots of offers जो आपके travel को बड़ा ही you know low cost बना देता है. So if you haven't booked your tickets for your next trip, then you have to check out this website tickets2india.co.uk. इसके अलावा ये कहना चाहूंगी, बड़ा बड़ा थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हु ट्यून इनटू द शो एवरी वीकेंड, एंड थैंक यू फॉर योर लवली मैसेजेस. थैंक्स फॉर टेकिंग पार्ट इन जॉइन द डॉट्स, व्हिच वाज आवर फर्स्ट फन गेम जो हमने पहले और सेकंड आवर में खेला. अब इस आवर में एक और फन गेम होने वाला है, कैच मी इफ यू कैन, विच इज गोना स्टार्ट इन जस्ट अ बिट, एंड देयर विल बी लोड्स एंड लोड्स ऑफ ब्यूटीफुल ट्रैक्स आल्सो विच यू विल बी एबल टू लिसन टू, इंक्लूडिंग द Leica चार्ट टॉपर ऑफ दिस वीक, विच इज अ न्यू चार्ट टॉपर, ब्यूटीफुल इंडी पॉप हिट, अ ब्यूटीफुल गजल, and the Pakistani heat of the hour as well. So let's not waste more time and get kicked off with Catch Me If You Can.
0: Catch Me If You Can with Mesa.
2: Leica Radio.
1: Catch Me If You Can इस गेम में मैं आपके बॉलीवुड लिरिकल नॉलेज को टेस्ट करती हूँ. मैं ये जानना चाहती हूँ कि द सॉन्ग्स दैट वी लिसन टू, द सॉन्ग्स दैट वी लव, द सॉन्ग्स दैट वी सिंग आवरसेल्व्स, हमें इसके लिरिक्स कितनी अच्छी तरह से आते हैं. ऑलराइट, सो दैट इज द क्विज दैट इज कॉल्ड कैच मी इफ यू कैन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं आपको तीन सॉन्ग लाइन्स सुनाऊंगी और उनमें से किसी एक सॉन्ग लाइन में मैं एक छोटी सी गड़बड़ करने वाली हूँ, और आज की गड़बड़ तो बहुत ही यू नो सटल है. आई रियली डोंट नो इफ यू विल बी एबल टू कैच इट, बट लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू डू. पहला गाना है, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे सोचता रहूं, फ्रॉम राजा हिंदुस्तानी. दूसरा गाना है, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन, फ्रॉम मन. और तीसरा गाना है, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, फ्रॉम जब वी मेट. बताइए मैंने किस गाने में गड़बड़ की है ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर.
0: WhatsApp Leica Radio Greater London now on 07424-222222.
3: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers, इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit startours.co.uk.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs अप्लाई।
3: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: ये है लाइका रेडियो।
1: लंडन वॉल्यूम पधारी दो और 20 जून बॉलीवुड की पावरफुल वॉइस भूमि त्रिवेदी आवी रही छे लंडन।
2: राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे
1: धमाकेदार म्यूजिकल नाइट पार्टी रेडी थे जाओ।
2: उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी।
1: प्रेजेंटेड बाय वन वर्ल्ड इवेंट्स एंड एसआर इवेंट्स एट क्रिस्टल ग्रैंड स्लाव 6 PM टू 11 PM। टिकट्स बुक करो srevents.com पर। भूमि त्रिवेदी लाइव इन लंडन एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
0: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12